श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख ले तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा

0: इसी के साथ रामचरितमानस का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, उसके उपरांत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अभवत्। श्रीमोदी 2024 मई मासस्य 26 दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत्। असौ पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयम् अतिक्रमितवान्, यः प्रथमवारं 2095 मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा 64.9 मई मासस्य 27 दिनांकं यावत् स्वीय सेवां प्रदत्तवान्। निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण पंडित नेहरू वर्यस्य कार्यकालः 98.3 यावत् आसीत्। 14.2 मई मासस्य 26 दिनांकादारभ्य अद्य 26.2 जून मासस्य 10 यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कार्यकालः निरन्तरं 99.3 दिनानि यावत् जातः, येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधि पर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभवत्। एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसा नायका एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदी वर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति, अपि तु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वासस्य प्रमाणमस्ति। एतदतिरिच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री

0: Di sini siaran luar negeri Akaswani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए, और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक

0: क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
6: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और POK में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता

0: की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our correspondent.
3: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over 3 consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest-growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies and emerged as a more more influential voice on global issues, including development, technology, climate action,

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने PM मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने PM विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को PM कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरेट मिनाब, बंदर आबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में 3 मुल्कों की 8 टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नबीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक

0: उसके हवाले से सुर्खी लगाई है। हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका। मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इनकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन।

सुबह के ठीक 9:15 होने को है। 9:15 पर आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

0: पाटनकर का राग बहादुरी तोड़ी और अब समाचार
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है।

0: है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continued

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ और खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मीठा सा प्यारा सा गीत आपकी नजर।

दोस्तों, अभी हमने बात की कि हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तो लीजिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना है। आज की दुनिया में जहां अलग अलग विचार, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं, वहां समझ और सम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। संवाद से ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं, और हाँ, एक बेहतर शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।

हम बात कर रहे हैं बहुत सारी जानकारियों की, तो जानकारी से जुड़े रहिए और सुनते रहिए घर आंगन का शो, यानी मेरे साथ सिमरन कौर के साथ। और अब बात करते हैं योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये योग। और ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक समग्र विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें शांति, संतुलन और ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक रूप से योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, रक्त संचार सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। नियमित योगासन से वजन नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर संतुलित रहता है। मानसिक रूप से योग तनाव और चिंता को कम करता है। प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। भावात्मक रूप से हम ज़्यादा संतुलित और सकारात्मक रहने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें अपने आप से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हैं। योग के माध्यम से हम अपनी सच्ची प्रकृति को जान पाते हैं। योग कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। बस 20-30 मिनट रोज देने से आपका पूरा दिन जो है वो बदल सकता है। तो आइए आज से ही योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ खुशहाल जीवन जिएं।

और अब बात करते हैं पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर एन राजम की। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर एन राजम, जो कि देश की मशहूर वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था और मात्र 3-4 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र तक वो प्रोफेशनल परफॉर्मर बन चुकी थीं। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग यानी ख्याल गायकी की शैली को बहुत

खूबसूरती से अपनाया। इससे पहले वायलिन को मुख्य रूप से साथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे सोलो वाद्य के रूप में स्थापित किया। उनकी वायलिन गाते हुए लगती है, इसीलिए उन्हें सिंगिंग यानी वायलिन भी कहा जाता है। और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में बहुत लंबे समय तक की सेवा की। पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण, तीनों ही सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। और ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर एन राजम की उम्र अब 88 साल के आसपास है, लेकिन उनका योगदान आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है।

और दोस्तों बात करते हैं, खुशी जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी हंसने का हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में ऐसी परेशानियों से अधिकांश लोग घिरे हुए रहते हैं। ये स्थिति हैप्पी हार्मोन डोपामाइन की कमी के कारण होती है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने डोपामाइन रिसेट करने का तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप 24 घंटे में ही असर देख सकते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स पर गहरा असर होता है। धीरे धीरे आपकी मानसिक सेहत में सुधार होने लगता है। और आज के समय में लोगों को उदासी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मार्टफोन और स्क्रीन टाइम। हालांकि लोगों को लगता है इससे उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन असल में ज़िंदगी का सुकून छीन रहे हैं। अब लोग खाने से लेकर बिस्तर तक, लेटने के दौरान, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के साथ ही व्हाट्सएप, ईमेल पर इस समय नज़रें रहती हैं, कि जो कि सेहत पर बुरा असर डालती हैं। खाना खाते समय किसी भी प्रकार के स्क्रीन ना देखें, और इसमें आपके दिन भर के मील्स भी शामिल हैं। हालांकि इसमें कुछ लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी टीवी मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और ख़ास तौर पर डोपामाइन को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन आदतों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ढेर सारी खुशी मिले। जैसे अपने दोस्तों से मिलते रहें और ख़ास तौर पर उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनके सुख दुख में शामिल हों। तो जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग बातें साझा करते हैं, तो एक दूसरों की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। अपने शौक़ को पूरा ध्यान दें। जैसे किसी को संगीत का शौक़ है, घूमने का है, पेंटिंग करने का है, उसे भी आप बनाए रखें। और इसके अलावा कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज में मिलकर रहने की आदत भी आपको खुशी प्रदान करेगी। और इसके अलावा आप घर से बाहर निकलकर ताज़ी धूप लें, हवा का एहसास करें, इससे डोपामाइन रिसेट होने में मदद मिलती है। तो इन सब बातों पर आप विचार करें। और इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सोने से पहले कभी भी स्क्रीन यूज ना करें, क्योंकि इससे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड शामिल हैं। आप सोने से पहले गहरी सांस लें और बिना किसी चिंता या विचार के सोने की कोशिश करें, तब आपको लगेगा कि आप खुशी के एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं।

खुशबू की तरह छाइए, लेकिन ज़रा आंख बंद करके सोचिए, सुबह चिड़ियों की चहचहाट, साफ हवा, ठंडा पानी अच्छा लगता है ना? पर आज हकीकत क्या है, गर्मी बढ़ रही है, नदियाँ सूख रही हैं, और दोस्तों पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, खाना और जीवन, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसे? रोज़ पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं और कार्बन बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा। घर से निकले तो कपड़े का थैला ले लीजिए, पॉलिथीन को

आ कहिए, और एक थैला साल भर 300 पॉलिथिन बचाता है। नल खुला छोड़कर ब्रश नहीं करिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली का स्विच ऑफ करना मत भूलिए, एसी 24 की जगह 26 पर चलाइए, बिजली भी बचेगी और बिल भी। गाड़ी रोज निकालने की जगह हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल चलाइए, और पैदल से चलिए और सेहत भी बनेगी, धुआं भी कम होगा। और हाँ, गर्मी में एक पेड़ जरूर लगाएं, नीम पीपल जामुन जो मिले, पेड़ एसी से बेहतर ठंडक देता है और वो भी मुफ्त में। तो याद रखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर टिका है। आइए आज से ही पर्यावरण की रक्षा करें, और एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि धरती की बस यही पुकार, हरा भरा हो संसार, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, और चलिए पर्यावरण के ही अनुकूल।

कब सुनाऊं, तो चलिए सुनाती हूँ आपको अच्छी सी न्यूज़ एक और कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के लिए डीटीसी की अपील शुरू कर दी है। दिल्ली में 2.35 लाख महिलाओं ने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है और डीटीसी की अपील है कि वो जल्द आवेदन कर ली, क्योंकि दिल्ली की बसों मुफ्त यात्रा की सुविधा लाभ उठाने के लिए 2,35,000 महिलाओं का पिंक कार्ड बनने के लिए अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 5,63,000 तक ही पिंक कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है और एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 8 लाख से करीब महिलाएं प्रतिदिन बसों में सफ़र करती हैं, जो अपने घर से काम पर जाने के लिए बस पकड़ती हैं और घर लौटने के लिए फिर बसों का उपयोग करती हैं। ऐसे में 14 लाख से लेकर 16 लाख तक प्रतिदिन पिंक टिकट का उपयोग होता है और महिलाओं को पूरी तरह से पिंक पास बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद ये पिंक टिकट बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले डीटीसी के पास केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य इस कार्ड को बनवाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आवेदन किया भी है। हालांकि अब अधिकांश पात्र महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं, जिससे केंद्रों पर भीड़ कम होने लगी है, लेकिन डीटीसी प्रशासन ने उन महिलाओं से अनुरोध किया है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। तो पिंक कार्ड के बिना महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा और ये स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना कार्ड के यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट लेना अनिवार्य होगा। इसीलिए असुविधा से बचने के लिए जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

और अब हम यही कहना चाहते कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, यदि आप हमसे मेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। पता है ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म मशहूर गुजराती उपन्यासकार गोवर्धन माधवम त्रिपाठी के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन किया था गोविंद सरैया ने और मुख्य भूमिकाओं में थी नूतन, जिन्होंने कुमुद का किरदार निभाया, और अभिनेता मनीष यानी सरस्वती चंद के रोल में थे। ये फिल्म एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि त्याग, संवेदना और भारतीय संस्कारों का एक खूबसूरत दस्तावेज बन गई। कहानी है सरस्वती चंद और कुमुद की, दो लोग जिनकी सगाई होती है और शुरू होती है प्रेम कहानी।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये ईमेल हमें मिला है नीतीश कुमार तनुजा देवांगन का, और आपके साथ हैं ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन, पाहंदा पालारी छत्तीसगढ़ से। और ये लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोला है। तो तनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। आप हैं फाजिल्का पंजाब से, भूषण गेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा। और ये मैसेज मिला है गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से। आप ही के साथ हैं शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। और ये मैसेज हमें मिला है अजीत भावसार जी का, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म सरस्वती चंद के हीरो मनीष, जिनका असली नाम आशीष कुमार था, वे बंगाली भाषा बोलते थे, हिंदी नहीं आती थी। पूरी फिल्म में उनके डायलॉग डब किए गए थे। डबिंग करने वाले विविध भारती रेडियो के आरजे ब्रिजभूषण साहनी ने अपनी आवाज़ दी थी। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है अजीत जी कि आपने, ये जानकारी हमें भी नहीं मालूम थी और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज हमें मिला है संजय साहू पोटिया कला से, और ये लिख रहे हैं कि सरस्वती चंद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली और पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हरिका और हार्दिक वंश बत्ता का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योतिरानी, कुलमंत कौर, मनु, और इन्होंने अपनी जगह का नाम बताया है पटियाला से। आप हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधि गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कुमुद और सरस्वती चंद की प्रेम कहानी शुरू होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों का मिलन अधूरा रह जाता है। कुमुद का विवाह कहीं और हो जाता है और यहीं से शुरू होती है भावनाओं, जिम्मेदारियों और त्याग की यात्रा। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक मूल्यों का आईना थी। कुमुद का विवाह एक अमीर प्रमोद यानी रमेश देव से हो जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रमोद एक अय्याश और शराबी है, फिर भी वो मुस्कुराकर अपना गम छुपाने की कोशिश करती है।

आपको बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ये फिल्म बनने की तैयारी शुरू हुई थी तब शुरुआती दौर में अभिनेता संजीव कुमार को लॉन्च करने की चर्चा थी, लेकिन निर्माण में देरी हुई और बाद में फिल्म की कास्ट बदल गई। ये बात उस समय काफ़ी चर्चा में रही। कुमुद के किरदार में नूतन ने जो भावनात्मक गहराई दिखाई उसे हिंदी सिनेमा की यादगार प्रस्तुतियों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि ये उनकी अंतिम प्रमुख रोमांटिक नायिका वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इन प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है सरस्वती चंद और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है हीरामणि वर्मा का दत्तरे की भाटापारा से। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, वडेंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, भोपालगढ़ राजस्थान से। आपके साथ हैं कपिल छिपा, पूजा परिहार। और इन्होंने लिखा है कि इसमें अभिनय किया था नूतन और मनीष ने, गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीतों को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, मुकेश और मुबारक बेगम ने। आपने इस फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए और नगमे भी सुनाए, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए इन्होंने हमें धन्यवाद बोला है। तो धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। और ये मैसेज मिला है गांव नथाना पंजाब से। भेजने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी और सीता और गीता। आप हैं डीबी राणा, नेहरू बिहार दिल्ली से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। और ये मैसेज हमें मिला है प्रेम सागर शुभलता का फ्रॉम अमृतसर से। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और हमसे जुड़े हैं जलालाबाद बेस से पूनम और सुरेश। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांव लोहगढ़

ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरेकर। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आगे। अगर सरस्वती चंद की बात है और संगीत का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे थे इंदिवर ने। इस फिल्म के संगीत को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला और वो गीत चंदन सा बदन, फूल तुम्हें भेजा है जैसे गीत आज भी सुनने वालों के दिल में बसे हुए हैं। एक रोचक बात यह भी है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में गीत की प्रेरणा एक प्रशंसक द्वारा भेजे गए फूल वाले पत्र से जुड़ी थी।

इस गीत से जुड़ा ही एक बहुत ही अच्छा सा हमें मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से भेजा है पब्लिश पवार जी ने, और लिख रहे हैं कि बिना शब्दों वाला अनोखा प्रेम पत्र। फिल्म का एक दृश्य और इसमें इस्तेमाल किया गया तरीका उस दौर में बहुत लोकप्रिय और अनोखा माना गया था। फिल्म में जब सरस्वती चंद कुमुद को अपना पहला प्रेम पत्र भेजता है तो वो कागज पूरी तरह से कोरा होता है जिसके अंदर बस एक फूल लिपटा होता है। ये इस बात का प्रतीक था कि उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं और वो फूल भेजने वाले के दिल को दर्शाता है। तो बहुत ही सुंदर सा मैसेज बबलेश जी ने भेजा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज सुधार का, और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप हैं दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता देवी और रुद्र वर्मा। नाहर कोहरा जिला राजनाथगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू,

प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू अभय नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव अनिता जाधव सोनल प्रसाद जाधव बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनदास लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन और आप हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को इतने दिल से सुना और इस फिल्म को केवल दर्शकों का प्यार नहीं मिला बल्कि सम्मान भी मिला। इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए कल्याण जी आनंद जी को पुरस्कार मिला और श्वेत श्याम छायांकन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्मफेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड एस अली राजा को मिला। कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी और अभिनय सबने पसंद किया। कुछ फिल्में समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे यादों का हिस्सा बन जाती हैं। सरस्वती चंद एक ऐसी ही फिल्म है जहां प्रेम शोर नहीं करता, बस मन में उतर जाता है।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना कोयल को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की कहानी, उसके संगीत और अनकही किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब से रोज दिन में 3 बजे से आप सुनेंगे गोल्डन एरा के पुराने गीत, तो सुनना ना भूलिएगा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। 1:40 होने को है, वह आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन नाल शर्मा, पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति दे संबंध विच अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए दी नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट दी तजवीज़। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश च सीएनजी दी कोई कमी नहीं है। अते विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर अज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की आज नवी दिल्ली च मीटिंग होगी। इस विच सरकार दे 12 साल पूरे होण अते भारत दे सब तो लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कार्यकाल दा जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दे चोटी दे नेता ते एनडीए गठजोड़ दियां सारियां भाईवाल पार्टियां दे नेतावां दी मीटिंग च शामिल होण दी उम्मीद है। सारे 22 एनडीए शासित राज्यों अते केंद्र शासित प्रदेशां दे मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्रियां, सारियां गठजोड़ पार्टियां दे नेता भी मौजूद।

0: आज कौमी राजधानी में मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मेंबरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी दे रहे हैं।
1: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वजरा अमित शाह, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आजाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने शानदार महारत, इत्मीनान और पुख्ताजम के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निजाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नजरिए की तकमील का अहद कर रखा है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजरा अला और नायब वजरा अला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुल्क में सीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस।

0: 500 लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: ईरान के पासदान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अब नए हुरमुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खित्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब नए हुरमुज में बंदरगाही शहर सिरिक और किस्म जजीरे पर हमला किया गया है। उधर उर्दुन के मुसलह अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ से ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल के अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मरतबा मदार में स्पेस एक्स और ब्लू ऑर्गिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। दिफाई साजो सामान की खरीदारी दिफा के शोबे में महारत के लिए इख्तरात और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए जांच के मराहिल से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरामन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुक्काम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खित्ते में इंसानी हकूक की सूरतहाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इंडी की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest serving elected Prime Minister. Cabinet passes a resolution applauding the historical achievement. Union Cabinet clears development projects worth more than 4,700 crore rupees, including extension of Ahmedabad Metro and government office and residential complexes in Amravati. NDA to meet in New Delhi to celebrate Prime Minister's achievements and completion of 12 years of government. Iran carries out attacks against US bases in Jordan and other targets in Gulf. US responds with strikes on Iranian targets. At least 13 people, including 11 children, killed in Pakistani airstrikes in Afghanistan. And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest serving

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

0: लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें

0: पांच स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन

0: ये सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कार्यक्रम में एक ऐसे जादुई नाम की गूंज है जिसने अपनी आवाज़ से न सिर्फ चार दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया बल्कि संगीत के नए पहलू भी दिखाए। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण SP बालासुब्रमण्यम की, जिन्हें हम सब प्यार से SP भी कहते हैं। हजारों गीत जो इनकी आवाज़ में गाए गए, ऐसी आवाज़ जो कभी हंसती तो कभी हमारी आंखों में आंसू भर देती। इस कार्यक्रम में हम सफ़र की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के उस दौर से जहां उनकी आवाज़ सीधे प्यार की आवाज़ बन गई।

दिल दीवाना, सचमुच इस आवाज को सुनकर आज भी दिल दीवाना हो जाता है। 80 का दशक आखिरी साल था, 1989। एक नया लड़का स्क्रीन पर आता है और नाम था उसका सलमान खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर उस लड़के को रोमांटिक हीरो बनाने के पीछे किसकी आवाज थी? जी हां, वो थे हमारे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब। जब उन्होंने मैंने प्यार किया के गाने गाए तो ऐसा लगा मानो

सलमान खान खुद गाना गा रहे हैं। ये बाला सुब्रमण्यम साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जिस एक्टर के लिए गाना गाते उनकी आवाज़ को उसी सांचे में ढाल लेते, चाहे वो सलमान के लिए पहला प्यार या फिर कमल हसन के लिए तेरे मेरे बीच में। तो चलिए उसी दौर का एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन से, जहां उनकी आवाज़ ने आशिकों को एक नया मकाम दिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार। अभी आपने जो गाना सुना वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि यादों का पूरा कारवां है। वैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, ये बात आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। उनके भीतर सुरों का ऐसा समंदर था कि उन्होंने शंकर भंडम जैसी शास्त्रीय संगीत

पर आधारित फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया। एक ही दिन में 21 कन्नड़ गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी में भी जब वो गाते तो उनके उच्चारण में जो ठहराव था वो कमाल का था। चाहे रोजा फिल्म का दर्द भरा गाना हो या फिर कोई चुलबुला अंदाज, चलिए आपको लिए चलते हैं एआर रहमान और एसपी बालासुब्रमण्यम की उस जुगलबंदी की तरफ जिसने 90 के दशक में हर दिल को छू लिया। आपको सुनवाते हैं रोजा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और वक्त इशारा कर रहा है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। श्रोताओं, साल 2020 में एसपी बाला साहब भले ही हमें शारीरिक रूप से छोड़कर चले गए हों, लेकिन संगीत का इतिहास जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है और हम संगीत प्रेमियों के दिलों में, वो हमेशा के लिए बस गए हैं। और जब तक बसे हैं, यानी कि जब तक दुनिया रहेगी और तब तक प्यार रहेगा, और हमें इस बात की खुशी है कि जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो हमें उनके गीत सुनकर जो सुकून मिलता है और एक सुखद एहसास होता है, वो अद्भुत है। तो चलते चलते उन्हीं का गाया खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम आपसे चाहते हैं अनुमति, और हमें दीजिए अनुमति। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार में, आज एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, और आप सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, और अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म साजन में।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोल्डन इरा के फिल्मी गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म यादगार से।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म जहरीला इंसान से, और अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ फिल्म समाधि में।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म मर्यादा से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

तो ये था कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

अपनी बेटी के लिए एक यतीम और मामूली हैसियत लड़के को क्यों मुंतखब किया था। शगुफ्ता एक खामोश साकित हुस्न की देवी, न खाने का होश, न कपड़ों की हिस, नाश्ता और खाना बनाकर अपने हाथ से खिलाना, चाय पिलाना भी रामिश के फ़राइज़ में शामिल था। वाहरी किस्मत, रामिश को अपनी अम्मी और अब्बू की बीवी दुल्हन अम्मी से ममता या प्यार जैसा कोई जज्बा नहीं मिल सका था। वो कुल 6 साल का था जब उसकी अम्मी उसको और उसके अब्बू को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। अम्मी को गए 1 साल भी नहीं हुआ था कि दादी नई बहू ले आई थी। पापा के बिस्तर पर दुल्हन अम्मी का कब्ज़ा हो गया था और रामिश दादी के कमरे में शिफ्ट हो गया। दुल्हन अम्मी के साथ उनके 3 लड़के भी आए थे। वक्त का ज़ख्मी परिंदा परवास करता रहा। रामिश ने 12वीं का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया और एक उदास सी शाम दादी ने चुपके से आंखें बंद कर लीं। उसने दादी के तीजे के दिन ही पापा को दुल्हन अम्मी के कमरे के दरवाजे में रोक लिया। पापा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ आगे पढ़ाई के लिए। रामिश, खर्च? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो उनके सीने से चिमट गया और बैग उठाकर ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश है। रामिश के हाथ में सेलफोन पर रिंगटोन बजी तो उसने माजी के दीमक ज़दा दरीचों को भेड़ दिया। उसके बेटे रैयान का मैसेज था, डैड हॉस्टल में हर तरह का आराम है, मेरा रूममेट भी बहुत अच्छा है, आई लव यू सो मच डैड। अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने कुछ दोस्त बना लीजिए, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। रैयान का मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भीग गईं। रात का पिछला पहर था, घर काट खाने को दौड़ रहा था। अब यही लैपटॉप उसका ऑफिस भी है और उसकी मसरूफियत भी, दिल काम में नहीं लग रहा था। पहली बार अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर किया था। लैपटॉप बंद करके उसने रैयान के मैसेज को कई बार पढ़ा और डरते डरते फेसबुक का आइकॉन दबा दिया। उसकी आंखें खैरा हो गईं। इस तिलसिमी दुनिया में सब अमीर व कबीर हैं, खुशियों के झूले और मस्तियों के रेले हैं। 1 घंटा दिमाग पच्ची करने के बाद बिलाखिर एक लड़की की समझदार और ज़िंदा दिल सी पोस्ट पढ़ी और उसका पुरकशिश फ़ोटो देखा तो उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और फौरन ही उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई। उसी लम्हे लड़की ने मैसेंजर पर उसको पैगाम भी दिया, मैं नेहा हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है और सड़ी गली शक्ल वाले रोते लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे यार, तुमने अपना फ़ोटो क्यों नहीं लगाया? अब दोस्ती कर रहे हो तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना ज़रूरी है, तुमने मुझे देखकर ही तो फ्रेंड बनाया है ना, जवाब दो, गूंगे हो क्या? ना ना नहीं, रामिश ने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से मैसेज पर बात की। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया, उसे फ़ोन पर टाइप नहीं किया जा रहा था, लेकिन तजस्सुस और अस्तराब ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरी बीवी। अरे यार, ये पेसिमिस्टिक बातें मुझसे मत करो प्लीज़। ये बताओ तुम्हें किस रंग के गुलाब पसंद हैं? लाल गुलाब मत कहना, पुराने हीरो मत बन जाना, मुझे गुलाबी और सफ़ेद गुलाब अच्छे लगते हैं। फूल? रामिश को अपनी सुहागरात के सुर्ख शबनबी गुलाब याद आ गए। अरे अब क्या सोचने बैठ गए, बाय बाय, लड़की ने लॉग आउट कर दिया। अब हर तीसरे दिन चौथे दिन लड़की रामिश से फेसबुक पर उसका हाल पूछती और एक दिन लड़की ने रामिश का सेल नंबर भी ले लिया। रामिश अपने दिल की बातें इस अनजान दोस्त से शेयर करने लगा। वो बड़ी महारत से मीठे बोल बोलती और रामिश अपनी शफ़ों के कामों से जल्दी जल्दी फारिग होकर नेहा की मज़ेदार बातों में मसरूफ़ हो जाता। अब वो दोनों रात को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी करते और बातों बातों में यूं ही सुबह हो जाती। वो उसका पता पूछता लेकिन वो हंसकर कहती, नाम ना जानूं, तेरा देश ना जानूं, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और वो शोखी से हंसती, अकेले तुम अकेले हम और क्या गम। अरे बाबू, अब हंसो बिना, ये क्या मजलूम सी शक्ल बनाए रखते हो, ज़िंदगी प्यार का गीत है। कभी तुमने मोहब्बत की? रामिश ने डरते डरते पूछ ही लिया। हाँ बहुत की, सच्ची बताऊँ? अब भी तो कर रही हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं की? रामिश ने बेकरार होकर सवाल किया। क्यों? क्या मेरी मर्जी? क्या क्या होता है? माई लाइफ, मैं चाहे ये करूँ चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। वो बाई आँख बंद करके सीटी बजाने लगी। अकेली रहती हो? जी नहीं घबराता तुम्हारा। अकेली? क्यों अकेली, तुम हो ना मेरे साथ। लेकिन मैं तो मोहब्बत करना चाहता हूँ, सच्ची मोहब्बत।

तो स्वीट हार्ट इनकार कब किया है? रामिश का दिल जोर से धड़क उठा। अरे यार, ये सच्ची मोहब्बत बड़ा जानलेवा काम है। अभी ऑफिस का मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, अब बाय। उसने अपने सुर्ख भरे भरे होंठों को गोल करके एक बोसा दिया और फोन बंद कर दिया। वो शर्म से जमीन में गड़ गया। रामिश के दिल में बसी उदासियों के घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण सी झलकने लगी। आधी रात को चौदहवीं का चांद देखते हुए वो रामिश को फोन करती, कमरे से बाहर निकलो और गाओ। जुल्फे हैं जैसे चांद पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। रामिश मबहूत सा नेहा को निहारता और नेहा अपने लंबे रेशम से मुलायम बाल खोल देती और खट से फोन बंद कर देती। एक दिन सरे शाम बारिश हुई तो नेहा का बारिश में भीगता हुआ फोटो आया और उस पर लिखा था, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। अक्सर रामिश को एहसास जुर्म होता, लेकिन वो अपने ज़मीर को ये कहकर मुतमईन कर लेता कि वो शफ़ों की खिदमत में कोई कोताही नहीं करता और ना ही अपने बेटे को कोई जहनी या माली परेशानी होने देता है। फिर वो कौन सा नेहा से ज़िंदगी भर का साथ मांग रहा है? ज़िंदगी की तरफ लौटने का एक दिलफरेब रास्ता ही तो है। 2 हफ्ते की मौसम सरमा की छुट्टी हुई और रैयान घर आ गया। रामिश ने नेहा का नंबर ब्लॉक करने से पहले उसको वीडियो कॉल की और मजबूरी जाहिर की कि वो रैयान के हॉस्टल वापस जाने तक उसको फ़ोन या मैसेज ना करे। रामिश रैयान के साथ ऐसा मसरूफ़ हुआ कि नेहा को भूल सा गया और उसने उसको एक बार भी फ़ोन तक ना किया। इतवार की सुबह रैयान वापस हॉस्टल चला गया और रैयान के जाते ही उसने नेहा का नंबर अनब्लॉक किया, लेकिन नेहा का नंबर लग ही नहीं रहा था और डीपी तो सिरे से गायब ही थी। रामिश का नंबर नेहा शायद डिलीट कर चुकी थी। रामिश की नींद, भूख और दिल की खुशी सब नेहा ले गई। 4 रातें बेख्वाब गुजारने के बाद रामिश ने अपने दिल को समझाया कि इसी शहर में तो रहती है वो, यहीं कहीं मिल ही जाएगी। वो शफ़ों के बेड से लगकर बैठ गया। शफ़ों के मुंह से बेहंगम सी आवाज़ें निकल रही थी। वो समझ गया कि शफ़ों ने डायपर में फरागत कर ली है। शगुफ्ता का डायपर बदलकर वो वहीं कारपेट पर लेट गया। सवेरे ही उसे ऑफिस से कॉल आ गई। शफ़ो, मैं आज ऑफिस के काम से गुड़गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। सामने वाली आंटी से कह दिया है, वो अभी तुम्हारे पास आएंगी। लेकिन शफ़ो की नज़र खला में भटकती रही। पड़ोसन आंटी के आते ही वो घर से निकल गया और गुड़गांव पहुँचने पर जो ही कैब से उतरा और ऑफिस की इमारत में दाखिल हुआ कि सामने फुटपाथ पर सर्दी की धुंधलाई सी धूप में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के सीने से चिमटी उसके गालों पर से लिपस्टिक के निशान साफ कर रही थी। रामिश के बुझे दिल में एक जलता रंग सा बजा। काश इस वक्त नेहा की वीडियो कॉल आ जाए। यूं ही लड़की उसकी तरफ पलटी, रामिश की आंखें पलक झपकना भूल गईं। एकदम वो उसके करीब आई और बोली, हाय जानी, कैसे हो, यहाँ कब क्यों आए? रामिश के गले में कांटे से उगाए। सुनो जैक, ये रामी रामिश है, मेरा फेसबुकिया, भोले से बाबू हैं ये। मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको प्रेम नगर की डगर दिखा दूं। उसने रामिश को खींचकर उसके सर्द रुखसार से अपना तमतमाता गाल मस कर दिया। एक झटके से रामिश ने उसको अपने से अलग किया और तेज तेज कदमों से ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गया। दिन भर अपने दिल को उदासी के भंवर में डूबने से बजाता रहा। रात को रामिश ने उसको कई मैसेज किए, लेकिन उसने उसका एक भी मैसेज नहीं देखा। रामिश के गुस्से का एटम बम फटने ही को था कि नेहा का फोन आ गया। यार, ये क्या अनसिविलाइज सी हरकत की तुमने? क्यों नहीं बात की जैक से? वो मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त। उसको बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम उससे क्यों इतनी करीब हो रही थी? रामिश को गुस्सा आया। तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुमसे कभी कोई कमिटमेंट किया था, मोहब्बत का इजहार किया था या इकरार किया था? नहीं किया ना। लेकिन नेहा, मैं सिर्फ तुमसे। रामिश के गले में कांटे पड़ गए। यार बी प्रैक्टिकल, ये मोहब्बत कहानियों में, अफसानों में और फिल्मों में होती है। तुम जैक को देखकर मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे और दूर जाकर क्यों खड़े हो गए? क्या बताना चाह रहे थे उसको? मैं तुम्हारी तरह हर किसी से यूं खुलकर नहीं मिल सकता। मेरा कोई मायार है। क्या मायार है तुम्हारा? बेवकूफ़ हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ़। और एकदम जज्बाती से, क्या मिला तुम्हें इन मोहब्बतों से? तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे प्रोफेसर ने और यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत को कितना मान दिया? उसने तुम्हें बताया कि वो एक जहनी मरीजा है? और तुम्हारा बेटा, वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? 16 साल का लड़का है, जवान है, बच्चा तो नहीं है। अब तक समझ में नहीं आया तुम्हें कि मोहब्बत क्या होती है?

0: और हाँ, मुझ पे तुम्हारा ना कोई जोर है और ना ही कोई हक। रामेश ने गुस्से से कांपते हुए फोन काट दिया और ज्यादा सुनने की ताब नहीं थी उसमें। 2 दिन तक मुसलसल उसी लड़की के मुतालिक सोचता रहा। उसने ना कोई मैसेज किया और ना ही सॉरी का कोई फोन। नेहा को उसका ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं था। इस हकीकत को कबूल करने में उसे किस कदर सख्त मरहलों से गुजरना पड़ा। रात तक वो अपने को कुछ नॉर्मल कर चुका था। उसने फेसबुक अकाउंट खोला और उसके हाथ से फ़ोन फिसल कर दूर जा घुरा। नेहा उसको अपने फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर चुकी थी। उसके दिमाग में अंधियाव चल पड़े। दिल भारी पत्थर हो गया और आंखों में गर्म रेत सी भर गई। जिंदगी में पहली बार रामिश ने अपनी आवाज़ को सिसकियों की कैद से आज़ाद कर दिया और वो हिचकियाँ ले ले कर रोने लगा। रात भर इसी गमो अंधों के सागर में डूबता रहा। वो अब किस दरवाजे की तरफ देखे, उसका तो कोई भी नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई चारा साज नहीं। फेसबुक ने तो इंसानों से भी ज़्यादा दर्द दिया है उसको। रात के न जाने कौन से पहर रामिश की आंख लग गई। सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया तो उसने जलती हुई आंखें खोली। सुबह की नर्म धूप खिड़की से उसके बिस्तर पर आ रही थी। ख्यालात के बेलगाम घोड़े अब थक कर अपने थान पर बन चुके थे। वो मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में था। उसने कई लंबे लंबे सांस लिए और अपने दिमाग के तमाम तारीक गोशे बंद कर दिए। रामिश के होंठों पर फातेहाना मुस्कुराहट नाच गई। उसने दिल की बेरब धड़कनों को समझाया। नेहा की रफाकत तो वक्ती थी, चढ़ते दरिया का एक उठान, एक दिल लगी बस। ना वो कभी एक दूसरे से मिले और ना कभी एक दूसरे के लम्स को महसूस किया। हाँ, ये रिश्ता बेनाम रामिश के लिए हसीन यादों का एक गुलदस्ता ज़रूर है। वो अपनी पहली मोहब्बत की सदाओं को ताउम्र अपने फ़ोन में महफूज रखेगा। और उसने तकिए के पास रखा अपना फ़ोन उठाया, नेहा के नंबर को आर्काइव्स में सेव कर दिया। रामिश ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और खिड़की से झांकती खुनक मुलायम धूप की कतरनों को अपनी हथेलियों में बंद कर लिया और एक नए अज़्म के साथ एक बार फिर फेसबुक पर एक नई जिंदा दिल और कुशादा जहन की खातून दोस्त की तलाश शुरू कर दी।
1: सामईन, अभी आप अफसाने से महजूज हो रहे थे जिसका उन्वान था हर एक पल विसाल का, जिसे पेश कर रही थी मोहतरमा रखशंदा रूही। आइए सामईन, सुनते हैं अब्दुल अजीज की आवाज़ में ये गज़ल।

गया और ये पलकें न खुलीं, अब क़यामत ही जो आए तो जगाने आए, अब क़यामत ही जो आए तो जगाने आए, कब के हम रादए दरबार हुए बैठे हैं, कब के हम रादए दरबार हुए बैठे हैं, बज़्म में आए भी तो लेके बहाने आए, बज़्म में आए भी तो लेके बहाने आए। और ये मक्ता है कि दिल की दुनिया मेरी बिखरी थी मगर ए कौसर, दिल की दुनिया मेरी बिखरी थी मगर ए कौसर, दोस्त आए भी तो कमरे को सजाने आए, दोस्त आए भी तो कमरे को सजाने आए। और एक गज़ल के बाद अब मैं नज़्म एक पेश करना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है वो एक आग, एक अजब आग सी है सीने में जैसे हो सीने शमशीर की आग, एक अजब आग सी है सीने में जैसे हो सीने शमशीर की आग, एक अजब आग सी है बातिन में जैसे हो नाले शबगीर की आग, जैसे एक शोले जव्वाला फलक को छूले सीने सर्द में मेरे है वही आग, अब भी तोदय बर्फ़ से जो बुझ न सके बन के शोला ये बढ़ी जाती है, सूए अफलाक उठी जाती है, बन के शोला ये बढ़ी जाती है, सूए अफलाक उठी जाती है, इसकी जद में हैं ये अशियाए निज़ाम आलम, बस के खौफ है पहलू में मेरे अपनी ही आग से अफकार न जल जाएं कहीं, बस के खौफ है पहलू में मेरे अपनी ही आग से अफकार न जल जाएं कहीं, सोचता हूँ कि दुआ ही मांगूँ, सोचता हूँ कि दुआ ही मांगूँ मेरे आतिश कदए सीना को, मेरा रब लुत्फ़ो करम का कोई चश्मा कर दे, एक अजब आग सी है सीने में। गज़ल के चंद अशार और मुलाहज़ा करें। यह है कि दुनिया का तमाशा वही दुनिया का तमाशा, दुनिया का तमाशा वही दुनिया का तमाशा, दरिया का तमाशा कभी सहरा का तमाशा, दरिया का तमाशा कभी सहरा का तमाशा, सब कारे ग़ुलामी में पड़े चीख रहे हैं, सब कारे ग़ुलामी में पड़े चीख रहे हैं, आका का तमाशा है ये आका का तमाशा, है विरदे हुवल्लाहु अहद जारी व सारी, है विरदे हुवल्लाहु अहद जारी व सारी, आ देख कभी सागर व सहबा का तमाशा। ये शेर के हर वक्त जबी साई की रहती है पड़ी धुन, हर वक्त जबी साई की रहती है पड़ी धुन, रहता है सदा क़िबला व काबा का तमाशा, रहता है सदा क़िबला व काबा का तमाशा। ये शेर के लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, शहदा का तमाशा तेरे रुसवा का तमाशा, लोगों ने तो देखा है पर देखा ही नहीं है, शहदा का तमाशा तेरे रुसवा का तमाशा। और ये शेर के मैं नूरा व अज़रा से परे देख रहा हूँ, मैं नूरा व अज़रा से परे देख रहा हूँ, शेरों में मेरे है गुले राना का तमाशा, शेरों में मेरे है गुले राना का तमाशा। और ये आखिरी शेर के दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, बाजार मोहब्बत में है सौदा का तमाशा, दरियाए मोहब्बत हुआ पायाब जभी से, बाजार मोहब्बत में है सौदा का तमाशा, सब कारे ग़ुलामी में पड़े चीख रहे हैं, आका का तमाशा है ये आका का तमाशा। दो तीन शेर और पेश कर दूं। मतला है कि कल जो उस जानिब मेरे जाने की तैयारी हुई, कल जो उस जानिब मेरे जाने की तैयारी हुई, अंदरूं रोशन हुआ बाहर ज़िया बारी हुई, अंदरूं रोशन हुआ बाहर ज़िया बारी हुई, बाद मुद्दत एक चिराग़े राह क्या रोशन हुआ, बाद मुद्दत एक चिराग़े राह क्या रोशन हुआ, ज़ुल्मतों के कान भरने को हवा तारी हुई, ज़ुल्मतों के कान भरने को हवा तारी हुई। और ये शेर के उसकी यादों का तअत्तुल ख़त्म होना था हुआ, उसकी यादों का तअत्तुल ख़त्म होना था हुआ, मौजे खूँ उठ कर के शिरयानों में फिर जारी हुई, मौजे खूँ उठ कर के शिरयानों में फिर जारी हुई। और ये शेर के एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल, एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल,
پہلے تو آنسو گرے، آواز پھر

0: भारी हुई, एक सदा भूली हुई कानों से टकराई थी कल। पहले तो आंसू गिरे आवाज़, फिर भारी हुई, रमज़ो ईमा अहद पैमा सब के सब अलकत हुए। रमज़ो ईमा अहद पैमा सब के सब अलकत हुए। क्या दरे सहरा खुला मजनू को सरशारी हुई, क्या दरे सहरा खुला मजनू को सरशारी हुई। और ये मक्ता के हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ, हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ। खाक पर बैठे थे कौसर फिर भी सरदारी हुई, हम अना को छोड़कर जाते भी तो जाते कहाँ। खाक पर बैठे थे कौसर फिर भी सरदारी हुई।
1: सामीन, अभी आप नवाए शायर के तहत सुन रहे थे जनाब कौसर मजहरी से उनका ये कलाम। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 4 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों प्रदर्शन पर आधारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं विदुषी।
2: नमस्कार, खेल खिलाड़ी से जुड़े सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: विदुषी, आज हम इस अंक में हम चर्चा करेंगे कल से शुरू होने वाले फीफा विश्व कप की, और इसके अलावा 12 जून से इंग्लैंड में होने वाले महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की संभावनाओं पर भी बात होगी, और अभ्यास मैच भी खेल रही है भारतीय महिला टीम, जहां इंग्लैंड ने उसे 172 रन का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बात होगी तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण की, और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पर भी बात करेंगे। तो विदुषी, क्यों ना शुरुआत करते हैं फुटबॉल के महामेले फीफा विश्व कप से। तीन देश, 16 शहर, 48 टीमें और 104 मैच। कल से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल का विश्व कप शुरू होने जा रहा है। फीफा विश्व कप का जुनून इस बात पर फिर मुहर लगा देगा कि क्यों फुटबॉल की दीवानगी अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। कल से 39 दिन फुटबॉल का रोमांच पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगा। जी हाँ, यही शोर और यही जोश खेल और खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर देता है, और रोमांच के कई सुनहरे पन्ने बेहतरीन प्रदर्शन की यादगार गाथाओं से भर जाते हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के काइलिन मबापे के स्टारडम के बीच नार्वे के इरलिंग हॉलैंड और स्पेन के 22 साल के लामिन यमाल का कमाल आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। ये भी मुमकिन है कि कोई नया सितारा अपने प्रदर्शन की चकोचौंध से सबको हैरत में डाल दे। दुनिया भर के 206 देश क्वालिफाइंग दौर से गुजरे हैं, जिसके बाद 6 महाद्वीपों के 48 देश इस महामुकाबले में उतरने को बेताब हैं। क्वालिफाइंग दौर 7 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, जो 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ। इनमें 45 टीमों ने विश्व कप का टिकट हासिल किया, जबकि 3 मेजबान देश अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा पहले से ही क्वालिफाई थे। फीफा विश्व कप की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 10 ग्रुपों की टीमों की ताकत, रिकॉर्ड और रणनीतियों पर चर्चा की है। उसी कड़ी में आज अंतिम 2 ग्रुपों की टीमों की बात करते हैं, और ग्रुप के में पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और DR कांगो शामिल है। पुर्तगाल की टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता, लेकिन पूर्व धुरंधर लुइस फीगो से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े फुटबॉलरों के नामों से सजी रहने वाली पुर्तगाल की टीम को कभी कमतर करके नहीं आका गया। कोच रॉबर्टो मार्टिनेज की चयन नीति ने उम्र की जगह फॉर्म और अनुभव को वरीयता दी है। 41 साल की गोल मशीन CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नाडो सिल्वा, रुबेन डायस और ब्रूनो मेंडेस भी टीम में शामिल हैं। बात उज्बेकिस्तान की करें तो उज्बेकिस्तान की टीम उन 4 टीमों में शामिल है जो पहली बार हिस्सा ले रही हैं। एशियाई टीम तकनीकी रूप से छोटे छोटे पासों की व्यूह रचना से खेलती है, उनकी गोल स्कोरिंग क्षमता भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन विश्व कप के मंच पर खिलाड़ी दबाव पर कितना काबू पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कोलंबिया की टीम को इस ग्रुप में पुर्तगाल के बाद नॉकआउट की दावेदारी में शामिल किया जा रहा है। कोच नेस्टर लोरेंजो की टीम में बैरन म्यूनिक के लुइस डियाज शामिल हैं। कप्तान जेम्स

रॉड्रिग पर भी बड़ा दारमदार रहेगा। कांगो गणराज्य की टीम को अपने मजबूत रक्षण के लिए जाना जाता है। अफ्रीकी टीम 1974 के बाद विश्व कप में हिस्सा ले रही है। खास दिन वह किसी भी टीम के खिलाफ बड़ा उलटफेर कर सकती है। के ग्रुप के मैचों में 17 जून को पुर्तगाल और डीआर कांगो के अलावा उज्बेकिस्तान और कोलंबिया का मैच होगा। 23 जून को पुर्तगाल उज्बेकिस्तान जबकि कोलंबिया और कांगो की टीमें आमने सामने होंगी। 27 जून को पुर्तगाल कोलंबिया का मैच नॉकआउट प्रवेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ग्रुप एल की बात करें तो इसमें पूर्व चैंपियन इंग्लैंड और यूरोप की बड़ी टीम क्रोशिया के अलावा पनामा और घाना की टीमें भी शामिल हैं। इंग्लैंड की टीम का 21वीं शताब्दी में अच्छा प्रदर्शन रहा है। टीम 2018 के फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची। तीन बार यानी 2002, 2006 और 2022 के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। केवल एक बार 2014 में ग्रुप दौर में बाहर हुई थी। टीम की आक्रमण पंक्ति में 32 साल के अनुभवी हैरी केन के अलावा बुकायो साका, एबरेजी शामिल हैं। मिडफील्ड में जूट बेलिंगम और डेक्लन राइस हैं। रक्षण में रीस जेम्स हैं। जर्मन कोच थॉमस रचेल की दुनिया की चौथे नंबर की टीम को विश्व कप जीते 6 दशक हो चुके हैं। बात क्रोशिया की करें तो क्रोशिया की टीम ने पिछले दो विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। 2018 में टीम फाइनल में पहुंचकर उपविजेता बनी थी और पिछली बार यानी 2022 कतर में हुए विश्व कप में टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संगम है। लुका मॉड्रिच अब 40 साल के हो चुके हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज भी 30 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं जिनमें 22 साल के मिडफील्डर पीटर सुचिच, 19 साल के लुका बोस्कोविच, 24 साल के जोसाको शामिल हैं। गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच अपने रक्षण और कौशल के कारण स्टार का दर्जा रखते हैं। दुनिया की 11वें नंबर की टीम क्रोशिया की कोचिंग जेलेट को डैलिज कर रहे हैं। पनामा की टीम 2018 से पहले कभी विश्व कप नहीं खेली। 2022 में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई लेकिन टीम इस बार विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। दुनिया में 34वें नंबर की टीम के कोच डेनमार्क के थॉमस क्रिस्टेंसन हैं। घाना की टीम की बात करें तो घाना की टीम का विश्व कप में श्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में रहा जब टीम अंतिम 8 में पहुंची थी लेकिन पिछली बार 2022 में ग्रुप दौर में बाहर हो गई। टीम के कई खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। 73वें नंबर पर मौजूद घाना की टीम ने 2006 में प्री क्वार्टर में ब्राजील को कड़ी टक्कर दी थी और 2010 में उरुग्वे से पेनल्टी में हारी थी। अगर टीम अपनी क्षमता से खेले तो किसी भी टीम को चौंका सकती है। ग्रुप एल से इंग्लैंड क्रोशिया को मजबूत दावेदार माना जा रहा है जो 17 जून को आमने सामने होंगे। विदुषी क्यों ना कुछ विश्व कप से जुड़े रोचक तथ्य जो हैं उन पर नजर डालें तो फीफा विश्व कप में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में जापान और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त मेजबानी की थी। मैक्सिको तीसरी बार फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उसने 1970 और 1986 में आयोजन किया था। अमेरिका इससे पहले 1994 में मेजबानी कर चुका है। कनाडा को पहली बार मेजबानी का मौका मिला है। अभी तक सर्वाधिक बार विश्व कप ब्राजील ने जीता है। उसने ये करिश्मा 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में किया। जर्मनी और इटली की टीम भी चार चार बार खिताब जीत चुकी हैं। पिछली चैंपियन अर्जेंटीना ने तीन बार ये खिताब जीता है। फ्रांस की टीम दो बार 1998 और 2018 में ऐसा कर चुकी है। उरुग्वे ने भी दो बार जीता है विश्व कप 1930 और 1950 में। इंग्लैंड की टीम 1966 में चैंपियन बनी थी जबकि स्पेन ने 2010 में विश्व कप जीता था। सबसे तेज गोल की बात करें तो ये रिकॉर्ड तुर्की के हकन सुकूर के नाम है जिन्होंने 2022 के विश्व कप में महज 11 सेकंड में दक्षिण कोरिया के खिलाफ गोल कर दिया था। हालांकि दक्षिण कोरिया की टीम बाद में 3-2 से जीतने में सफल रही थी। ब्राजील के दिग्गज पेले ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। उन्होंने ऐसा 1958, 1962 और 1970 में किया जब ब्राजील की टीम ने विश्व कप जीता था। जर्मनी सबसे अधिक 8 बार फाइनल खेलने वाली टीम है। मेसी अभी तक सर्वाधिक 26 मैच खेलने वाले फुटबॉलर हैं। जर्मनी के मिरोस्लेव क्लोज ने अभी तक सर्वाधिक 16 गोल किए हैं। फीफा विश्व कप में कई बार उलटफेर देखने को मिले हैं लेकिन अगर कुछ खास उलटफेर की बात करें तो 1950 के विश्व कप में उरुग्वे ने मेजबान ब्राजील को हराया था। इसके अलावा सेनेगल ने 2002

0: में पिछले चैंपियन फ्रांस को उद्घाटन मैच में मात दे दी थी। इस बार कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अर्जेंटीना के मेसी या पुर्तगाल के रोनाल्डो 6 बार विश्व कप खेलने वाले फुटबॉलर बन सकते हैं। दरअसल दोनों ही उन फुटबॉलरों में शामिल हैं जो 5-5 विश्व कप खेल चुके हैं। मेसी के नाम अभी तक विश्व कप में 13 गोल हैं। अगर वे 4 गोल और करते हैं तो मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वैसे फ्रांस के एम्बापे 2 विश्व कप में अभी तक 12 गोल कर चुके हैं, 24 साल के हैं और सबसे युवा 15 गोल करने वाले फुटबॉलर बन सकते हैं। अर्जेंटीना 1962 के बाद खिताब की रक्षा करने वाली पहली टीम बन सकती है। 2022 विश्व कप में 172 गोल हुए थे। इस विश्व कप में ज्यादा 48 टीमें हैं और सबसे ज्यादा मैच 104 होने हैं। ऐसे में यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। नॉर्वे के इरलिंग हॉलैंड अपने पहले ही विश्व कप में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बना सकते हैं। फीफा विश्व कप के बारे में 39 दिन तक चलने वाले रोमांच के बारे में हमने बात की पूर्व भारतीय फुटबॉलर आनंदी बरुआ से, तो क्या कहा उन्होंने आइए जानते हैं।
1: फुटबॉल मतलब महाकुंभ है, पूरा यूनिवर्स देखता है। और इस बार एशियन कंट्रीज है, 9 टीमें हैं, तो मजा कुछ अलग ही है फुटबॉल का।
2: तो सर ये जो स्टार हैं, अब मेसी और रोनाल्डो का पुराना जादू है और मबापे ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में दिखाया है, और कई नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो इस छाप छोड़ सकते हैं।
1: हाँ, अभी छाप छोड़ सकते हैं। अभी अभी जर्मनी के 2 प्लेयर हैं, एक ब्राजीलियन प्लेयर है, जेवियर है, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोरर है, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या करेंगे वो देखना है। छोटे जो अंडर 19 और 20 के जो लड़के हैं, जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, फीफा अंडर 21 खेले हैं, तो वो नो डाउट अच्छे ही खेलेंगे, लेकिन सीनियर तो सीनियर ही होता है। इसमें थोड़ा अलग फुटबॉल का मजा आता है।
2: अर्जेंटीना पिछली चैंपियन है और फ्रांस पिछले 2 बार से, एक बार 2018 में चैंपियन बना, 2022 में फाइनल में पहुंचा, तो अर्जेंटीना और फ्रांस और ब्राजील इनकी दावेदारी कितनी पुख्ता देखते हैं सर?
1: बहुत, अभी ये बहुत ही आपने कठिन जवाब पूछा कि कौन सी टीम आएगी। देखिए, पहले लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच जो एशियन कंट्री खेली, उन्होंने 5-5 गोल से हारे रशिया से और सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया लास्ट वर्ल्ड कप में। तो खाली अर्जेंटीना एक ही मैच हारी, लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप लेके आई है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी। लेकिन ये है कि हाँ, ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है, अर्जेंटीना आ सकती है, एंड बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है इस बार, ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, तो कम आंकना बड़ा मुश्किल है। बोल नहीं सकते कि किस कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा।
2: नॉर्वे लंबे समय बाद आ रही है और हॉलैंड ने बड़ा एक रुतबा हासिल किया है इस विश्व कप से पहले, बड़े कद्दावर स्ट्राइकर हैं, और यमाल 22 साल के, स्पेन की बात की, इस 22 साल के यमाल को भी निगाहें रहेंगी,
1: एकदम रहेगी। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है। अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो, या आप ब्राजीलियन प्लेयर लो, नेमार लो, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए, और अभी जो आप उमर को बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा प्लेयर है, स्किलफुल प्लेयर है और गोल मारने भी बहुत सक्षम है, लेकिन जब मैन मार्किंग होता है वो कैसे खेलेंगे, मैन मार्किंग में दूसरा कौन सा प्लेयर फायदा उठाएगा, वो जो फॉर्मेशन होता है कोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा गेम होगा इस बार वर्ल्ड कप में।
0: जी हाँ, अच्छा गेम होगा वर्ल्ड कप में। और फुटबॉल विश्व कप के बाद विदुषी, क्यों ना बात T20 वुमेन वर्ल्ड कप की करें, जो 12 जून से इंग्लैंड के में खेला जाना है, और वहाँ वार्म अप मैच भी आज चल रहा है कार्डिफ में, जहाँ भारतीय महिला टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और 171 रन बना दिए 6 विकेट पर। इंग्लैंड को 172 रन का लक्ष्य मिला है, और ताज़ा अपडेट ये है कि 6ठे ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 29 रन बनाए हैं। और अब बात T20 विश्व कप में भारतीय संभावनाओं पर।

पिछले साल भारतीय महिला टीम ने जब वनडे विश्व कप जीता था तो जश्न का यही माहौल था, वही जश्न और उत्साह इस बार T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम के लिए प्रेरणा का नया सूत्र बनेगा। T20 विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। विश्व कप के अब तक 9 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन भारत को पहले खिताब की तलाश है। पिछले साल

महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम एक बार फिर चमचमाती विश्व कप की ट्रॉफी उठाने को बेताब है। भारत अब तक 4 बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। एक बार 2020 में भारतीय टीम फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 12 टीमें इस बार महिला T20 विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। 24 दिन में 33 मैच खेले जाएंगे, जो कि इंग्लैंड के 7 स्थलों पर होंगे। अब तक सर्वाधिक 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता है। शुरुआती मैच 12 जून को बर्मिंगम में होगा, जो कि मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इस बार ICC ने टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 कर दी है। भारतीय टीम ग्रुप ए में

0: आती है कि इस गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो कि हम हमेशा तरोताजा और स्वस्थ नजर आए। इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीषा वर्मा, जो कि आहार विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। डॉक्टर मनीषा जी, आपका हमारी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और खान पान की अगर हम बात करें तो इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा तो बदलाव अपने खान पान में करना ही होगा। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए इस गर्मी के मौसम में?
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में भी आपके एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, खाना पचाने के लिए हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बाहर भी गर्मी है तो बॉडी को ठंडा रखना, जो हम आम भाषा में बोलेंगे हाइड्रेट रखना, बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में। हाइड्रेट से हम जानते हैं जैसे कि तरल पदार्थ जो है वो आपको अपने खाने में भोजन में इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें आप नींबू पानी, नारियल पानी और बहुत तरह के सत्तू हो गया, जौ का पानी, बहुत सारे आप तरल पदार्थ ले सकते हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप ये तरल पदार्थ ले रहे हैं तो अगर इसमें हम कुछ सोर्स जैसे कि कुछ बीज जो गर्मी में हमें राहत देते हैं, वो तीन तरह के हैं, गोंद कतीरा हो गया, सब्जा बीज हो गए जिसे तुलसी के बीज भी कहते हैं, और चिया सीड्स हो गए। अगर इसकी मात्रा आप 5 ग्राम तक इसे पानी में भिगो लेंगे तो इसकी एक जेल बन जाएगी, तो ये एक जेल की फॉर्म में होगा। उसी में ही अगर आप इसमें नींबू निचोड़ के नमक डाल के एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, उसी में ही आप छाछ मट्ठा ऐड कर सकते हैं, सत्तू ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगा, जो बीज में विटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो बॉडी में फाइबर है उसकी भी कमी ये पूरी कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के बीज जो हैं आप गर्मी में इनका सेवन कर सकते हैं, और आपको जो खाना है थोड़ा लाइट लेना चाहिए।
0: जी,
1: संतुलित आहार की बात कर रही हूँ। लाइट खाने में जैसे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा हैवी फूड ना लें, आप फ्राइड फूड्स कम से कम इस्तेमाल करें, जो भी खाना हो वो घर का खाना बना होना चाहिए, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उससे पचाने भी मुश्किल होगा, पहले ही गर्मी के कारण शरीर को ज्यादा ऊर्जा करनी पड़ती है प्रोड्यूस, तभी वो आपकी पाचन शक्ति है जो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इसके लिए आपको सादा भोजन, घर का भोजन और बासी ना हो, और उसमें तरल पदार्थ जरूर इंक्लूड करने चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे।
0: अच्छा, जैसे आपने बात की हाइड्रेशन की बात की कि तरल पदार्थ लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो तरल पदार्थ लेने पे उनको कुछ ऐसी शिकायत होती है जैसे जोड़ों में दर्द है या शरीर में कोई परेशानी होने लग रही है, तो बहुत ठंडा चीज वो नहीं लेते हैं, तो तरल पदार्थ अगर उन्हें देना हो तो किस तरीके का उन्हें तरल पदार्थ में क्या ऐसा दें जो उनके लिए फायदेमंद हो?
1: सबसे पहले मैं बात करूंगी जैसे कि आप गर्मी बहुत है, बाहर बहुत टेम्परेचर है आज दिनों में, कोई तुरंत आप घर पे आके डायरेक्ट फ्रिज से पानी मत पीजिए, पहले अपने बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, टेम्परेचर को नॉर्मल होने दीजिए फिर ही, और कोशिश करें जैसे पुराने समय पे हमारे बुजुर्ग करते थे कि मटके का पानी पीते थे, जो कि बहुत ही हेल्दी एक ऑप्शन माना जाता है, उससे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं और वो नेचुरली ही ठंडा हुआ है। अब ये आजकल थोड़ा मैं देख रही हूँ काफी जगह पे कि मटका रखना स्टार्ट तो किया है घर में सबने, किचन में कुछ ना कुछ मंगवा के आजकल जैसे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, बट ये है कि उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखें, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो 2 साल के हैं 3 साल तक, उन्हें कोशिश करो फ्रिज का पानी मत दो। जैसे आपने बात की तरल पदार्थ में जैसे हेल्दी ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी ठंडा पीने का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ठंडा पीने का मतलब कि आपको जो जंक ये चीजें आ गई, फ्रूट जूसेस हो गए जो जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, पैक्ड आइटम्स है, उनसे दूर रहना है। आपको घर पे बनाए हुए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि आम पन्ना हो गया, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए कांजी बनाई जा सकती है, हाँ तो इसमें आपको अलग अलग तरह के गुलकंद डाला जा सकता है आपको जैसे दूध के साथ, वो भी शरीर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, आम रस हो गया, तो ये सब छाछ मट्ठा, ये सब आप जो भी हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात रही कईयों को पी के कुछ खट्टे से अगर जोड़ों में दर्द की आप बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल पर्सन पे, अगर आपको कुछ ऐसी शिकायत उससे लग रही है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबके लिए ही रिकमेंडेड है कि जो हेल्दी ऑप्शंस है वो अपने आप डाइट में इंक्लूड करें। बट ये बात है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा अगर आप मसालों का सेवन करेंगे, लहसुन का सेवन करेंगे, उसमें ना मेटाबॉलिज्म

0: का ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी को ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जो मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ कि उससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मसालेदार कम चीजें हो, कम तेल में हो, थोड़ा सादे की तरफ और फल सब्जियों पर ज्यादा फोकस करके और तरल पदार्थ पे ज्यादा फोकस करके, यही आपको कुछ मॉडिफिकेशंस अपने डाइट में करने हैं।
1: हमने देखा कि महिलाएं अपनी स्किन को लेकर के बड़ा केयरफुल रहती हैं कि मेरी त्वचा खराब ना हो, लेकिन आज जो गर्मी का मौसम इसमें जो चल रहा है तो उसमें तपिश पड़ती है, जो हमारा चेहरा वो झुलसता है, तो ऐसे में स्किन को तरोताजा सुंदर बनाए रखने के लिए क्या ऐसा कुछ खाएं जो अपनी डाइट में लें कि वो वैसे के वैसे कंटिन्यू बना रहे।
0: बिल्कुल जी, जैसे हम कहेंगे कि गर्मियों में मौसम में सबसे ज्यादा जो तपस है 10 से आपके 4 के बीच में होता है, यूजुअली 12 बजे के बाद कोशिश करो घर से ना निकले, बट कई बार कुछ काम ऐसे है, कोई बाहर काम कर रहा है कि कोई अलग अलग प्रोफेशन में जाना पड़ता है, तो सबकी बेस्ट स्किन को बचाने के लिए वाइटामिन सी जिसमें ज्यादा होता है, वाइटामिन सी युक्त जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए,
1: जी
0: संतरा हो गया हमारा, नींबू हो गया, और बहुत सारी चीजों में फल सब्जियों में वाइटामिन सी पाया, आंवला हो गया, ये सारे स्किन जो आपकी है उसमें कोलाजन प्रोड्यूस करते हैं जो स्किन बनाने में हेल्प करता है,
1: जी
0: तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो सब्जियों और फलों में मिलते हैं और वाइटामिन सी रिच जो आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके उसको अपनी स्किन को त्वचा को वैसे बरकरार रख सकते हैं।
1: जी ये गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें देखा जाए तो गर्मियों में होने वाली बहुत सी बीमारियां भी सामने आती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं।
0: बिल्कुल जी, जैसे हमने आम भाषा में सुना होगा कि लू लग गई है,
1: हाँ
0: बच्चों
1: जी
0: में लग जाती है, बूढ़ों में लग जाती है, बड़ों में भी, तो इसमें क्या होता है कि आपको लगने से हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, यूजुअली आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है कि लू लगने से अगर किसी को हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता
1: जी
0: है, और अदरवाइज इसमें क्या होता है कि उल्टियां लगना, दस्त लग जाना, तो ये सारे जो भी आपकी गट हेल्थ है ना, गट हेल्थ इससे डिस्टर्ब होती है गर्मी से, डिहाइड्रेशन से,
1: जी
0: तो इससे ये बीमारियां, उल्टियां, दस्त लगना, हीट स्ट्रोक होना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, तो ये सारे इसी के ही लक्षण हैं। तो
1: जी
0: आपको इससे बचने के लिए यही है कि बहुत ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखना है और अच्छा और स्वस्थ खान पान करना है।
1: बिल्कुल, एक गर्भवती महिला की हम बात कर लें, अब ये गर्मी का मौसम है तो गर्भवती महिला जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको लेकर भी वो परेशान है, तो ऐसे में गर्भवती महिला अपना और अपने उस गर्भस्थ शिशु की कैसे उसका ध्यान रखें इस बारे में कुछ बताएं।
0: इसमें क्या होता है, गर्भावस्था में हमें ज्यादा कैलोरीज की, प्रोटीन की जरूरत होती है, आपको आहार तो संतुलित लेना है, एक पौष्टिक थाली ही लेनी है जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हो, फल सब्जियां सब कुछ हो, बट
1: जी
0: साथ साथ हाइड्रेशन का, वही जो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो आपको हेल्दी ड्रिंक्स लेनी है उसका पूरा ध्यान रखना है, तो वो ये कर सकते हैं कि अगर उनको ऐसी गर्मियों में पानी पी के या नींबू पानी पी के या एक नारियल पानी पी के, तो उसमें वो कुछ प्रोटीन सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कोई नींबू पानी पी रहे हो तो 2 चम्मच चना सत्तू ऐड कर लो, कुछ प्रोटीन अंदर गया आप, जो का
1: बिल्कुल
0: आटा ऐड कर लो, चना सत्तू ऐड कर लो, कोई प्रोटीन पाउडर जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं।
1: और
0: बिल्कुल
1: खास करके उम्र विशेष की हम बात करें, जैसे करें बड़े बुजुर्गों की, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे मौसम में अगर देखा जाए तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए और क्या सावधानी बरतें वो अपने स्वास्थ्य को लेकर।
0: तो उसको खान पान में सबसे पहले तो जो उनकी गाइडलाइंस है उनको फ्राइड नहीं खाना, जिस जिस पर परहेज रखना है, अगर शुगर वाला व्यक्ति है जिसको मधुमेह है तो उसको आम वगैरह से परहेज रखना है, तो वो कोशिश करे कि इस सीजन में ज्यादा मैंगो और आम पन्ना इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे, है ना, शेक्स वगैरह नहीं ले सकते, तो
1: जी
0: उनके
1: जी
0: लिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर कम है वो वाले हमारे पास छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब चीजें वो ले सकते हैं। बाकी मैं बात करूंगी कि जितना भी आपको जो प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो भी आपका पैकेट में बंद है, जो कुदरती तौर पे नहीं उगा प्लांट पे, पैकेट में बंद है, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं,
1: जी
0: ट्रांस फैट्स पाई जाती हैं, वो आपको नहीं लेना, तो वैसे ही आपके लिए वो नुकसानदायक है, ऊपर से गर्मी के कारण उसको शरीर को पचाने में और एनर्जी चाहिए, अगर शरीर को एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी में से पानी कम होगा, अगर बॉडी में से पानी कम होगा तो आपका खून का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और आपकी बॉडी को खून का काम है कि हर पौष्टिक तत्व पहुंचाना, अगर उसका ही वॉल्यूम कम होगा तो आपकी बॉडी को जो जरूरी पौष्टिक तत्व हैं वो आपके ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएंगे, और ये आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी पे इफेक्ट करेगी, जिसका इफेक्ट आपकी किडनी पे भी पड़ सकता है और ऑर्गन्स पे भी पड़ सकता है। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन के कारण उसमें किडनी स्टोन वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये आप सारी जड़ आपकी आ गई कि आपका खाना अगर स्वस्थ होगा, पौष्टिक होगा, हाइड्रेट आप रहेंगे, उस तरह से फॉलो करेंगे, तो आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होगा, अच्छे पौष्टिक तत्व मिलेंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होंगे।
1: फास्ट फूड की हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं, नहीं मानते हैं, तो अगर कार्यक्रम सुन रहे हैं बच्चे भी अगर सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो सोचें और समझें कि वाकई इसका कितना बड़ा नुकसान है इस चीज़ को खाने का, तो इस बारे

0: 1 हो गया, 2 हो गया, इवन कि अभी बच्चों में बहुत पाया जा रहा है जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, चीनी बहुत ज्यादा होती है. तो ये तीनों चीजें जो सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी एक्सेस में, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ही पाया जाता है. तो जितने भी पैकेट बंद है, इससे बेटर है कि आपका जो भी खाना हो वो घर का खाना हो, घर पे ही बच्चों को स्नैक्स बना के दीजिए, उसमें अलग अलग ऑप्शंस ऐड कीजिए, प्रोटीन सोर्सेज दीजिए, दालों का, स्प्राउट्स का, ये सब बना के दीजिए, साथ में फल और सब्जियां बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें, और खास करके गर्मियों के मौसम में उन्हें हाइड्रेट रखें, उन्हें अच्छी अच्छी ड्रिंक, पुदीना डाल के, तरबूज डाल दिया, खीरा डाल दिया, पुदीना डाल दिया, मिक्स करके जूस भी दे सकते हैं अगर बच्चे पूरा फल नहीं खा रहे, तो उससे इनका हाइड्रेशन बना रहेगा. तो जैसे आप करोगे वैसे बच्चे फॉलो करेंगे. अगर घर में आप पैकेट लाकर रखोगे तो बच्चों तो खाएंगे ही खाएंगे. तो पहले आप खुद करेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे. तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे एक फैमिली को एक अच्छा संतुलित भोजन लेना है, हाइड्रेट लेना है और स्वस्थ रहना है.
1: कुल मिलाकर आपकी थाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों,
0: बिल्कुल
1: संतुलित आहार हो और आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न डाले.
0: बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि हम अब कुदरत से जितना दूर होगे उतना नुकसान होगा, वही बात है. जितना आप पैकेट की तरफ जाओगे, प्रोसेस्ड की तरफ जाओगे, तो आपकी बॉडी हेल्थ उतनी डिटीरियोरेट होती जाएगी. जितना कुदरत की ओर जाओगे उतनी ही मन को शांति मिलेगी, तन को शांति मिलेगी और खाना आपका अच्छा होगा, स्वस्थ रहेगा.
1: मतलब प्रकृति के साथ चले, उसे संतुलन बना करके चले. घर से बाहर निकलते समय इस गर्मी के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या लेकर के चलना चाहिए?
0: बिल्कुल जी, एक तो सबसे पहले है कि कॉटन के कपड़े पहने, टोपी पहन सकते हैं, मुंह ढक सकते हैं, छाता रख सकते हैं कि हम धूप से बचे, और उसके साथ अपने पानी की बोतल जरूर कैरी करनी है आपको. एक ना एक कोई खीरा या कोई ना कोई फल साथ में कैरी कर सकते हैं, पर पानी के लिए छाछ, मट्ठा, कुछ भी अपने साथ कैरी करना है आपको हमेशा. और कोशिश करनी है कि आपको घर से पहले तरल पदार्थ कोई भी है पी के जाए, और घर पर पहुंच के पहले उसका ही सेवन करे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो. मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस गर्मी के मौसम में अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और कोई भी प्रोसेस्ड या बाहर की आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इनका सेवन मत करें, और नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें. हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे.
1: डॉक्टर मनीषा जी, आप आहार के बारे में, खास करके गर्मी के मौसम में आपका खान पान कैसा, इस विषय पर आपने अपनी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
2: लोकेंद्र भाई, देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी डॉक्टर साहब ने दी, और जानकारी का विषय था गर्मियों के मौसम में आपका खान पान कैसा हो, और भी जानकारी दे रही थी डॉक्टर मनीषा वर्मा, और जो कि आहार विशेषज्ञ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना गर्ग.
3: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए इतनी अच्छी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे जो युवा साथी भी हैं और श्रोतागण भी हैं, इन इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे, और हमें गर्मी में किस तरह का भोजन करना है, किस तरह की डाइट लेनी है, तो उससे संबंधित ये जानकारी थी.
2: बिल्कुल, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना. और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है. सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम.
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री

0: मंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल है। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉ. सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए लोकेंद्र भाई, हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी भूमि को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहते हैं कि हम अपनी जो जमीन है इसको किस तरह से उपजाऊ बनाएं, किस तरह से इसकी हमारी जो उपज है वो बहुत अच्छी हो। और जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको तरह तरह से बताते भी रहते हैं कि उनको अपनी मिट्टी में क्या करना है, मिट्टी की जांच कब करवानी है, पानी की जांच कैसे करवानी है, और उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, और जैविक खेती की ओर हमें किस तरह कदम बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको बताते रहते हैं, और हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत जागरूक हो गए हैं इस टाइम पे, और वो जैविक खेती की तरफ ही अब अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर हम यूरिया या इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो हमारे खेतों को सिर्फ नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य है कृषि भूमि की उर्वरता, उत्पादकता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। देखिए वंदना बहन, वर्तमान समय में मिट्टी की संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक उपयोग, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां खेत को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में खेत बचाओ अभियान किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण, फसल चक्र अपनाना तथा जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल, और संतुलित उर्वरक और का प्रयोग जो करता है, खेत की आवश्यकता के अनुसार खाद को संतुलित करता है, मिट्टी की जांच करना यानी कि जो हमारे मिट्टी भूमि के उर्वरक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना, किसान की आय को बढ़ाना, ये सब मुख्य बातें हैं जो कि हमारे किसान भाई जान चुके हैं।
1: और देखिए इसी के लिए हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं, किसान मेले, रेडियो कार्यक्रम और डिजिटल माध्यम के जरिए किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, और इसके किसान बेहतर निर्णय लेने के सक्षम होते हैं और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए कहते हैं ना कि भाई जब हमारी भूमि स्वस्थ रहेगी, जैविक खेती होगी और उसमें अच्छे उत्पाद पैदा होंगे तो हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु सब कुछ अच्छा होगा।
1: तो हम बातचीत और भी करेंगे, तो सबसे पहले सुनना आते हैं उपदेश कलाकार हैं जोगिंदर सिंह से।
0: जी

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जोगिंदर सिंह से ये उपदेश।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं,
0: जी हाँ।
1: जिसमें से एक योजना है कृषि विपणन अवसंरचना योजना। देखिए किसान विपणन अवसंरचना योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है वंदना बहन किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादकों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि बाजारों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसिंग, ग्रेडिंग एवं और इसके अलावा गुणवत्ता प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमारा किसान भाई अपनी उपज को किसी भंडारण में, किसी गोदाम में या किसी कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं कुछ दिनों के बाद, तो उन्हें ये एकदम से उनके दिमाग में नहीं होता कि जो हमारी फसल है उसे तुरंत बाजार में बेचना है।
1: हाँ।
0: जब भी उनकी फसल का अच्छा दाम होता है वो तब उसको बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये सस्ते दामों में जो बेचने की आफत सी हो जाती है ना कि भाई ये फसल उगी है तो उसे तुरंत बेचना है, तो सस्ते दामों से उन्हें मुक्ति मिल गई। और जब उनका दाम उन्हें सही रेट मिलता है उनके आय के अनुसार, वो तब उसे बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो भंडारण से यही एक फायदा होता है और हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए भी एक रोजगार का अवसर है, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सब्सिडी भी देते हैं।
1: हाँ, तो उसका हमारे भाई जो हैं सब्सिडी का भरपूर लाभ उठाएं और इसकी योजना का भी लाभ उठाएं
0: जी।
1: तो हम
0: जो हमारे सामान्य किसान भाई हैं उनको 25% से 33% तक सब्सिडी दी जाती है, और जो एससी या अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 33% की वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी
1: अच्छा,
0: दी जाती
1: उसमें
0: है,
1: भी है उनको लाभ।
0: जी हाँ।
1: हाँ,
0: तो ये जब भी हम कोई गोदाम बनाते हैं तो कुछ पैसा हमें सरकार देती है,
1: बिल्कुल,
0: और कुछ हम अपना लगा के वो गोदाम बना सकते हैं। तो ये आपका एक रोजगार का भी अवसर हो जाता है कि किसानों की जो फसल होती है उसमें जमा हो जाए।
1: बिल्कुल। तो ये तो रही योजना और इसका हमारे भाई बहन जरूर फायदा उठाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं विनोद कुमार की आवाज़ में ये उपदेश।

बिन जमीदार चाले रहो जा रहती कति मरोड़ नहीं। इंदर बरसे घोर घोर के।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश विनोद कुमार से, और चलते चलते एक और उपदेश सुनते हैं सुरेश चंद गोला से।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे सुरेश चंद गोला की आवाज़ में ये उपदेश। और देखिए, आज हमने अपने भाइयों से बहुत सारी बातें करी हैं और इसी के साथ अब हम टाइम ख़त्म होता जा रहा है और हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। और आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम और आगाज करते हैं जगजीत साहब की इस खूबसूरत सी गजल के साथ।

मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने युवा संगम के 6वें चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और राजधानी में जारी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कल वर्षा की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज केवल जन प्रतिनिधियों ने ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिक प्रधानमंत्री के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह महसूस करती हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जो सराहनीय है।
4: महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया, आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि देशवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय तक देश की सेवा की है और उनके नेतृत्व में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
5: विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है। हमारे देश 11-12 वर्षों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह ऐसे ही देश की सेवा करते रहे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता, अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो उनकी सोच से ये आता है कि हमको देश के किसान, देश के पिछड़े

0: पिछड़े हुए देश के आदिवासी कोने कोने तक जाना है और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देश के लिए गौरव की बात है।
2: 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जो लाभान्वित ना हुआ हो, पूरी दिल्ली की जनता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर्मशील स्वस्थ जीवन दीर्घायु के साथ और जनता की सेवा में लगे।
1: इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रा सिंह ने रोहिणी स्थित श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और महाआरती का आयोजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और देशवासियों के गहरे और निरंतर विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र सेवा के सतत 4,399 दिन तथा सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सभी के लिए राष्ट्र सेवा, तप, त्याग और कर्म निष्ठा की प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर देश की उन्नति, समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर श्री संधू ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क तथा प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है। युवाओं के साथ संवाद के दौरान उपराज्यपाल ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलावों तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे देश के भविष्य के सबसे अहम हितधारक हैं। श्री संधू ने अपने सार्वजनिक जीवन और कूटनीतिक अनुभवों को भी युवाओं के साथ साझा किया तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अमृतसर स्थित भाई वीर सिंह साहित्य सदन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक पंजाबी साहित्य के जनक भाई वीर सिंह के आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भाई वीर सिंह जी की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत आज भी समाज को प्रेरित कर रही है तथा हमारी सांस्कृतिक और नैतिक चेतना को सशक्त बना रही है। रक्षा खरीद और उत्कृष्टता के लिए नवाचार और लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई सहित स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य रक्षा ढांचे में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। इस 2 दिन की कार्यशाला का उद्देश्य संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से उद्योग प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर

0: गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इस्तेमाल की जा रही एक चार पहिया वाहन भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत की गई है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी मामले में सहकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देशभर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रूपये के लेन देन का पता चला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने कार्यकाल में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर और केंद्र सरकार के जनसेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। श्री खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास, स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसेवा की भावना ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा विकसित भारत का संकल्प जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
1: देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जिस विश्वास के भरोसे प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा प्रारंभ की है, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये सब देशवासियों के स्नेह, प्रेम और विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ उसके लिए योजनाएं लेकर के आई है। जहाँ कुछ नई योजनाएं तय होंगी, वहाँ हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक लेकर के जाएंगे ताकि आम जनता को भी उसका लाभ मिल सके।
0: राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने युवा संगम के छठे चरण में युवाओं से भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, सार्वजनिक नीतियों में हो रहे बदलाव तथा युवाओं के लिए उपलब्ध नई संभावनाओं पर चर्चा की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का हमारा एक कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं रेखा भारद्वाज की गाई इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

0: ओ जाने वाले, लता जी की आवाज में इस खूबसूरत सी पेशकश को आपने सुना। और कार्यक्रम रहा गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज खूबसूरत से गीतों को पिरोकर हमने आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की। और एक बार पुनः गीतों का यही काफिला दोबारा से चलेगा रात 11:10 पर। तो फिल्म संगीत का जो आज का गीत मालिका कार्यक्रम है, उसे हम अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैम

0: खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स

0: समारा पे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcis

0: एस जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the

0: generated over 23 lakh job opportunities and 16 lakh innovation projects developed by students, providing a powerful foundation to the startup ecosystem. An entrepreneur, Shilpa from Warangal in Telangana, said Startup India initiative is catalyzing startup culture and building a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship.
1: Startup India is a commendable idea which is giving a platform to lot of youngsters with new business plans, new business ideas. And if you observe, you can see a lot of new business coming up on this platform which we have never seen before.
0: Under the PM Setu scheme, 60,000 crore rupees allocated for the modernization of 1,000 ITIs, equipping youth with industry ready skills. The country's youth power with government's support is bringing a new dawn for India. With Anupam Mishra, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: India has condemned the attack on the commercial vessel Setubelo off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39, Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11, Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
3: Adab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने کانگریس کی اعتماد شکنی کے بعد NDA

0: सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
1: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा हैं, न कि सियासी मजबूरी का।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
0: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खिराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमू तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
2: आज कैबिनेट

0: में तीन फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और दो फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके दो फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के दो बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वज़ीर आज़म मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगी मील से वज़ीर आज़म मोदी की फ़र्ज शिनासी के साथ खिदमत और क़यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने बरसों से भारत की इक्तसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसनाई के, पपुआ न्यूगिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वज़ीर आज़म मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खित्ते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इक्तसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
3: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फ़ायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और ख़ुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौजवान

0: किसानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुलनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर का अंदाज़ा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपये के कर्ज जात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

मैं यहाँ तू वहाँ, तरानी रमीश नवीद, बिस्तर ये अमिताभ बच्चन, असल में बागबान।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप ये फिल्म का गीत सुन रहे थे। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि आप सोचते हैं कि आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ज़िंदगी के उस सफ़र में बस अकेले भाग रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जज्बात हैं, कुछ ऐसे दिल की बात हैं जो हमेशा दिल में ही रह जाती हैं। कभी ये उतरती भी है तो पन्नों पर, या फिर कभी ऐसे ही जज्बात दिल में उतरते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहने से भी डरते हैं और कहते कहते रुक भी जाते हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही दर्द को लिए हुए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़।

जी हाँ, फिल्म आराधना का ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में जो था, वो हमें ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि हर कोरे कागज़ को पहचान नहीं मिलती। कहते हैं कि कुछ अरमान, कुछ दिल के जज्बात यूं ही खाली पन्नों की तरह बस हवा में उड़कर चले जाते हैं अगर हम वक्त को ना थामें, क्योंकि वक्त ऐसा है रेत के समान, जैसे ही आप उसे हथेली में कैद करेंगे बस रेत हाथों से फिसल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ पल ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम जिंदगी भर के लिए रोक लेना चाहते हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जिसे हम हमेशा अपने दिल में समा लेने की कोशिश करते हैं, दिल में कैद करना चाहते हैं। और इसी खूबसूरत एहसास को अगला ये जो गीत है वो बयां करता है। और कहते हैं ना कि मुलाकातें भी अधूरी रह जाती हैं और मलाल भी रहता है ज़िंदगी भर, लेकिन अगर वो मुलाकात मुकम्मल हो जाए और अपने एहसास, अपने जज्बात कहीं ना कहीं नज़रों के ज़रिए ही, एक खूबसूरत एहसास के ज़रिए ही आप अपने महबूब तक पहुंचा सके, तो ये अपने आप में एक मुकम्मल मोहब्बत बन जाती है। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कहते हैं मोहब्बत का एहसास भी कितना अजीब होता है, जब कोई हमारी ज़िंदगी में आता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी को असली मायने मिल गए हैं। और इनको कुछ शब्दों में अगर बयां करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि नज़रों में

आपकी कुछ ऐसा कमाल देखा है, उजड़े हुए दिल का बदलता हाल देखा है, खुदा की रहमत कहें या फिर आपकी चाहत का असर, अपनी किस्मत का चमकता हुआ सितारा देखा है।

वो आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि बहारों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। बात जब उनके हुस्न और सादगी की चली तो वक्त ने भी ठहर कर उन्हें तकना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कि कुछ शख्सियत ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनके सामने लफ्ज़ निकलते नहीं, आवाज़ रुक जाती है, सांसें रुक जाती हैं और हर एक तारीफ जो है वो छोटी लगने लगती है। और कहते हैं कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा नजराना हो, बड़े से बड़ा ख़जाना हो, उनके आगे कम लगने लगता है, फीका लगने लगता है। और जब मोहब्बत में पाकीज़

पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे आप सुन रहे थे, और आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: Of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार।

0: बैठक में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गज़ल गीत।

अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में पंकज उदास का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मेरी गजल गायकी के 25 साल के इस सफ़र का जश्न है और आज न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं आप सब से बातें करूं, ढेरों सारी बातें करूं, दिल की बातें, अपने इस गज़ल के सफ़र की बातें, अपनी ज़िंदगी के बारे में, साज और सुर, गज़ल और नगमा जो मैं आपके सामने पेश करते आया हूं, उसके बारे में बातें करूं। किसी एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात बहुत देर के बाद आई है। पहली गज़ल जो मैंने आपके सामने पेश की वो मेरा पहला एल्बम सन 1980 में

0: इसके साथ ही आज का गजलों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 4:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वालन वादन। कलाकार हैं जी उमा, आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे जी उमा और आपके साथ मृदंगम पर संगत किया था MV चंद्रशेखर ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है। शक्त संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज के योग होंगे योग मुद्रासन और आश्वासन। देशभक्ति गीतों का समय रहेगा सुबह 5:20। साढ़े 5 बजे सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे विदुषी माधुरी डांडिगे से राग गुणगली। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। 6:40 का समय रहेगा चिंतन का। आज आप सुनेंगे रहीम के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनेंगे। आज आप सुनेंगे बालकंड का भाग 83। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुष्परानी मित्रा के गाय भजन। साढ़े 7 बजे गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उस्ताद जावेद अली खां का गायन। उद्योग पत्रिका का समय रहेगा सुबह 9:15। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय रहेगा सुबह 10:10। पर सुनिएगा स्वरांजलि। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शशांक शेखर से गजलें। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार

0: सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन

0: कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. BJP President Nitin Naban has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naban said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naban said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम

करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास